बेगैरत इंसान हो जिसे बातें बनाने के सिवा कुछ नहीं आता। कुमार, तुम्हारा कोई कैरेक्टर है ना? ईमान ना वफादारी।